0: बजाज एक्सचेंज मेला पुरानो बाइक संग नया बाइक काटने मेला
1: स्टार ऑटो हब प्राली रणा ऑटो हब प्राली को समन्वय एपेक्स ऑटो इंटरप्राइजेस बजाज सर्विस सेंटर मंथली